ताई मरेको सिराईमा फुर्केरी बाना ढलक ढल्क्यो जो बाना अब लाउन माया लाउ

0: वा फोन नम्बर 9816091013।
1: हिमशिखर टाइम चेक,
2: अहिले 5 बज्यो।
3: यस, टाइम चेक का प्रायोजक
4: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSCI एजुकेशन फाउन्डेसन दमक।

0: आयो
1: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
2: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि, फोन नम्बर 9816091013।
3: मामाईसँग हल्का रमाइलो

0: ग्लोबल आइडी ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क। हिमशिखर टाइम चेक
1: अहिले 7 बज्यो। यस टाइम चेक का प्रायोजक
2: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSEI एजुकेशन फाउन्डेसन दमक।

0: ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क। हिमशिखर टाइम चेक
1: अहिले 9 बज्यो। यस, टाइम चेक का प्रायोजक
2: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSCI एजुकेशन फाउन्डेसन दमक।

0: आईना देख के भूले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।
1: देख के तुमको

0: Rio Rio Cigar, Exetin, Toprotin, Megahertz.
1: श्रोता अब तपाईँ एक घन्टा अवधि भर पुराना पुराना कालजयी हिन्दी गीत संगीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ।